0: your life, your music, your 89.1 FM, NTN Radio.
1: Please welcome Sukhwinder.
2: ये मौका मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया है और मैं आप सब लोगों का सब तमाम आर्टिस्टों की तरफ से बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
3: जिनके